ये हिजाता फिजी रेडियो और मैं हूँ प्रोग्राम डायरेक्टर विनेश। हमेशा की तरह हम आपके लिए लाए हैं कुछ मस्त सॉन्ग्स, कुछ जानकारी और बहुत सारी बातें। दोस्तों साथी आपको स्वागत करते हैं जल सफी जी रेडियो के साथ लाइव ब्रॉडकास्ट में। मैं हूं प्रोग्राम डायरेक्टर विनेश और हमारे साथ आज पैनलिंग में साथ दे रहे हैं साहिल जी। और दिस इज आवर 706th एपिसोड ऑन अप्लाइंस मीडिया एफएम 96.9। और ये जो प्रोग्राम आप सुन रहे हो दिस इज फ्रॉम द सेंट्रल सिटी। जी हाँ, सेंट्रल सिटी मद्रास स्ट्रीट से हम ये जो एपिसोड यानी कि आज का जो प्रोग्राम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस प्रोग्राम में थोड़ा ट्विस्ट रहेगा, हमेशा हमारे पास एक गेस्ट होते हैं और जब गेस्ट होते हैं देन वी डू हैव इंटरेस्टिंग कम्युनिकेशंस, इंटरेस्टिंग जो हम कन्वर्सेशंस करते हैं और काफ़ी जो समाचार आप तक लाते हैं कभी इवेंट्स रहता है, लेकिन उसी दौरान हमारे जो सॉन्ग्स है वो कम हो जाता है। सो वी आर नॉट एबल टू प्ले एज मैनी सॉन्ग्स एज वी वुड लव टू। और इसीलिए आज हमने सोचा है कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हम ज़्यादा से ज़्यादा सॉन्ग्स आपको सुनाएंगे। तो चलो हम देखते हैं कि साहिल के पास कौन सा पहला सॉन्ग है और सॉन्ग के बाद में फिर हम कुछ और बात आपसे करेंगे।

Jalsa Fiji Radio, Jalsa Talent Series and Jalsa Business Series would like to express their gratitude to the following sponsors. Generation Homes, contact them for your building requirements. And Lifestyle Solutions, contact Richard Sevak if you need help with insurance. And contact Varun Jani of Next Step Accountants and Business Advisors for accounting needs. And contact Rohit Sajadeva of Better Choice Home Loans for your financing needs. And contact NZ Flames, Baba at Wairaki Road for your hairdressing requirements. And contact T. Nandan of GoWise Driving School if you need driving lessons. And contact Anshul Gupta of Client Real Estate, who can assist you with achieving a better sale for your property. And contact Monil Pratap of Majestic Stays if you are looking for accommodation in the city. And contact Dini from On The Go Eastgate for all mechanical requirements. जी हाँ दोस्तों, सत्य आशा है कि आपको एक जो गीत सहल ने भी प्ले किया आपको पसंद आया होगा। इसी तरह हम और भी आप तक सॉन्ग्स पहुंचाते रहेंगे, बिकॉज टुडे वी वांट टू प्ले एज मेनी सॉन्ग्स एज वी पॉसिबली कैन। और आशा है कि आपका जो आज का सरडे अच्छी तरह बीत रहा हो रहा होगा। जी हाँ, और अभी हाल ही में आपने देखा होगा हमारा जो टैलेंट सीरीज भी चल रहा है, डू कनेक्ट। और अगर आप भी कलाकार हो, अगर आपको मन चाहिए, देन डू कॉन्टेक्ट अस एंड वी विल सी इफ यू कैन मेक अ स्लॉट फॉर यू। और अगर आप इस एन ऑडियंस आना चाहते हो, यू वांट टू सी हाउ इट ऑल हैपेंस, तो भी आ सकते हो। द सेटअप इज क्वाइट डिफरेंट, इट्स नॉट लाइक द नॉर्मल स्टेज शोज आप देखते हो यहाँ पे जब आप जाते हो। दिस इज मोर लाइक a show that is more like on recorder, जैसे आप टीवी स्क्रीन पे देखते हो। सो दिस इज अ डिफरेंट फॉर्मेट, वी आर ट्राइंग टू डू इट फॉर द सोशल मीडिया जो वीडियोज हम करते हैं। सो यूल हैव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस इफ यू डू कम, फील फ्री। और चलो हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा नेक्स्ट सॉन्ग है, फिर हम और बात करेंगे।